0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Sony FM. Studio time.
4: It's 7 a.m. Bihanko 7 baje.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोलू दूध को नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: प्रोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुतकु नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु
2: माउस

0: का सभी के सरोकार आज का बाल बालिका भोलि का सदनहार
1: बाल बालिका मधि होने कने दुर्व्यवहार कानून ने दंडनीय होने तसर्थ कसले बाल बालिका दुर्व्यवहार नगरौ उन्हीं को अधिकार सुनिश्चित कर आफ्नो तर्फबाट सहयोग करौ अनिवार्य रूप में विद्यालय पठाओ र बाल मनोभावना बुझेर शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप में सहभागी कराओ
0: कहीं कति बाल बालिका मधि दुर्व्यवहार भएको देखिमा सहेर नबसौ सम्बन्धित निकाय में उजुरी गरौ बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सबैको जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय हुन् बाल बालिका को सुरक्षा तथा संरक्षण सबैको जिम्मेवारी असल सभ्य नागरिक को परिचय दिन
1: अस्ट्रेलियन एज र अस्ट्रेलियन हिमालयन फाउंडेशन को सहयोग में रूप नेपाल द्वारा जनहित में जन संदेश

0: रेडियो एफ एम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: 5 PM सात को 5 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई ऑफसेट प्रेस सोनू दूध को नगर पालिका 5 सोनू कुंभू
3: तवारी साधन को हिंदी में तेजी श्रृंखला संबंधी सूचना आदरणीय सेवाग्राही महानुभावर तपाईले आफ्नो सवारी साधन नयाँ खरिद गर्दा नामसारी गर्दा सवारी साधन को इंजिन र चेसिस को अवस्था रुजु वा अन्य कुनै कैफियत भए नभएको रुजु गरेर मात्र खरिद बिक्री गर्नका लागि यसै सूचना मार्फत अनुरोध गरिन्छ। प्रदेश सरकार आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्रालय

0: काठमाडौँ एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: संक्षेप सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 6 PM साँझ को 6 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यूज स्टार डिजिटल कलरला तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलु दुर्कुंड नगरपालिका 5 सोलुखुम्बु

0: shit. Sorry, I found it's studio time.
1: It's 8 p.m. Rapko 8 baje.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू
3: मेरा विवाह.

0: त्रिभुवन एफएम 101.2 मेगाहर्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
0: इट्स 9 PM रात को 9 बजे टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोनू दूध को नगर पालिक 5 सोनू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोताबिन तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सोनू एफएम मा अब सुन्न सकिन्छ नेपाली चटबहार गीतहरू

0: 人生を感じるポジティブロザイ。
1: उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण गरौं गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गरी उपभोक्ता को अधिकार को रक्षा गरौं कारोबार में बे दूषक लिने र दिने गरौं कारोबार पारदर्शी बनाऊ नफा को उद्देश्य भूता भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना गरौं वस्तु सेवा को मूल्य मात्रा म्याद सकी नीति गुणस्तर एकीन गरे मात्र खरीद बिक्री गरौं वस्तु वा सेवा को प्रयोग कुनै हानि नोक्सानी भए स्थानीय प्रशासन में उसुरी गरौं वस्तु तथा सेवा को प्रयोग स्थिति पुगे क्षतिपूर्ति नगरौ निष्पक्ष तथा तथ्यपूर्वक सूचना पाउने उपभोक्ता अधिकार को रक्षा गरौ भ्रमपूर्ण विज्ञापन तथा सूचना को कारण उपभोक्ता छोड़िए स्थानीय प्रशासन में उजुरी गरौ आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय कोशी प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sonia Fan. It's studio time.
2: 10 p.m. Rat code 10 baje.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलू दूध कुंड नगर पालिका 5 सोलू कुंडू